ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। चीन में कौमी दिन मनाने के लिए जुमेरात को हफ्ता भर की तातीलात का आगाज हो गया है। इन तातीलात में करोड़ों चीनी सफर करते हैं, लेकिन बिगड़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात की वजह से जापान आने वाले सियाहों की तादाद में कमी मुतवक्के है। चीनी हुकूमत का तखमीना है कि तातीलात के इस अरसे के दौरान लोग 2.13 अरब बार सफर करेंगे। चीन की बड़ी ट्रेवल एजेंसी का कहना है कि इन तातीलात के दौरान मकबूल इंतखाब जनूबी कोरिया, जनूब मशरकी एशिया और यूरोप हैं। जापान इससे कबल चीनी सयाहों में इंतहाई मकबूल था, लेकिन इस साल सरफहरिस्त मकामात में शामिल नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख होते ताल्लुकात के पस मंजर में चीनी एयरलाइंस ने जापान के लिए कई रूट्स पर परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इसे आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने की

0: 一緒に行きませんか？
1: अब एक साथ खाने की दावत देने वाला एक मकालमा सुनिए।
2: कुम्बन, 一緒にご飯を食べに行きませんか？
3: いいですね。行きましょう。
1: और अब इस मकालमे की तशरीह।
2: कुम्बन, 一緒にご飯を食べに行きませんか？
3: आज रात एक साथ खाना खाने ना चलें?
1: कुम्बन, यानी आज रात, 一緒に यानी एक साथ, गोहान का मतलब है खाना और गोहान और तवेनी इकु यानी खाना खाने के लिए जाना। इसमें फेल इकु यानी जाना को इकिमासेन का में तब्दील करके मधु किया जा रहा है।
3: いいですね。行きましょう。
4: ठीक है, चलें।
1: いいですね किसी की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इकिमाशो फेल इकु की माशो शक्ल है। इस मकालमे में ये साथ जाने की दावत कबूल करने के लिए इस्तेमाल हुई है।
4: सबक नंबर 22 में कोई काम साथ करने की दावत देने के लिए फेल की माशो शक्ल इस्तेमाल करने का बताया गया था। मसलन शाशिंग और थोरी माशो यानी एक साथ तस्वीर बनाएं। तो बताइए कि मसेंका और माशो में क्या फर्क है?
1: माशो में मुखातिब से अपनी दावत कबूल करने का हल्का सा इसरार शामिल होता है, जबकि मसेंका मुखातिब की दस्तियाबी या रजामंदी मालूम करने का एक शाइस्ता अंदाज है।
4: तो सामिन सुनिए और दोहराइए।
0: गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का? कोनबान, इश्शो नी गोहान ओ तबे नी इकिमासेन का?
4: जी सामिन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब एक और सूरत हाल में दावत देने की मशक करें। फर्ज करें आप कहना चाहते हैं सब मिलकर बारबेक्यू ना करें। सब मिलकर की जापानी है मीन ना दे और बारबेक्यू करने को कहते हैं
0: बारबेक्यू ओ सुरु। बारबेक्यू ओ सुरु
1: फेल सुरु की मास शक्ल होगी
0: शिमास। शिमास
1: तो सामीन कोशिश करें।
5: मीन ना दे बारबेक्यू ओ शिमासेन का? みんなでバーベキューをしませんか？
4: じいさめん、うみでアプネドルスチュムラバナリアホガ。
1: アブイザフィマルマーツカコーナー。アジケジュムラミヤネマイキダワシャイスキーセラッカネケリスタマーキアヘイ。イセイシタライアッカリジエ。
6: 土曜日はちょっと。
1: ちょっと、キラズィマニヘザラヤクチ。リケナガラビスケアハリセコ、スュルニチャカテウェケンチカリュンカヘイ。चुत्तो तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं। ये तरीका आमतौर पर किसी की दावत को शाइस्तगी के साथ रद्द करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोयोबी व चुत्तो का मतलब है कि हफ्ता मेरे लिए जरा मुश्किल है।
4: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: दोयोबी व चुत्तो।
8: दोयोबी व चुत्तो।
9: दोयोबी व चुत्तो।
4: जी सामिन, अब आपकी बारी है तो सुनिए और दोहराइए।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें माइक दूसरों को साथ चलने की दावत दे रहा है।
10: कोंदो नो दोयोबी काइटो तो निंजा हकुबुत्सुकान नी इकिमास।
11: माइक सान वा होंटो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
10: हाय, मिन्ना दे इश्शो नी इकिमासेन का?
11: दोयोबी वा चोट्टो私も授業があります。
12: 残念、じゃあ二人で行こう。
13: マイクと一緒にポップカルチャ
4: ー。अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है निंजा।
1: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खसूसी दस्तों की मानिंद थे। निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है। تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے۔ میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں۔
4: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
1: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے۔
4: उनके पास जादू या हाथ की सफाई जैसे बहुत से हुनर भी तो होते थे।
1: मांगा यानी कार्टून की किताबों या फिल्मों में दिखाई जाने वाली ज्यादातर चीजें तो बाद में बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन कुछ खुफिया हुनर उनके पास जरूर मौजूद थे। उनमें से एक धात का बना हुआ सितारा शुरीकेन या निंजा स्टार फेंकना था। वो पांव की चाप पैदा किए बगैर चलने और दुश्मन की नजरों से ओझल होने के लिए धुएं के बम इस्तेमाल करने जैसे हुनर भी जानते थे। निंजा अद्वियात और मौसमों के इल्म से भी खासी वाकफियत रखते थे। इसके अलावा वो अपने मिशन की अंजामदही के लिए इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज होने जैसी तकनीक भी इस्तेमाल करते थे। जंगजू सरदार उन्हें जासूसी सरगर्मियों के माहरीन के तौर पर अहमियत देते थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं है। ये पुरासरियत भी इनकी मकबूलियत की एक वजह है।
4: निंजा जापान की तारीख और सकाफत का एक दिलचस्प मौजू मालूम होता है। मैं इस बारे में मजीद मताला करूंगी। अगले सबक में माइक और काइटो मिए प्रीफेक्चर में वाके निंजा म्यूजियम पहुंचते हैं।